0: और मैं पाचू
1: इटीनो और रेडियो यम ये करे वेर क्वारो
0: और मैं पाचू
1: इटीनो और रेडियो

0: और मैं पाचू
1: इटीनो और रेडियो पियम येकरे वेर क्वारो
0: और मैं पाचू
1: इटीनो और रेडियो

0: और मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो यूम ये करे वेर क्वारो
0: बीमार मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो